0: Mica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: Travel at all protected.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: राजीव बर्मन के म्यूजिक पर लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में था सागर फिल्म का ये गाना, और उससे पहले आपने सुना कभी कभी फिल्म का गीत। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज के मनोरंजन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जिसे आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ। लेकिन आज रवि जी की जगह ऋतु शर्मा आपका साथ देगी। 1 बजे तक यही रहूंगी और हमेशा की तरह सुनाऊंगी एक नहीं दो नहीं ढेर सारे क्लासिक्स। लेकिन सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, आपको बता दें कि ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं अगर आज, तो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leica Radio. Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: लीजिए आयशा जी और आरडी बर्मन की आवाजों में था ये गाना जिसे आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन से। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है। फ्राइडे का दिन है, आज है 24 जुलाई और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो। सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, आज 1 बजे तक मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दूंगी और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं और आप में से कुछ बड़े ही सरप्राइज हैं कि अरे आज रवि शर्मा जी की आवाज को क्या हो गया। तो आपको बता दूं कि रवि शर्मा जी की आवाज बहुत अच्छी है, एकदम दमदार है, लेकिन ये आवाज ऋतु शर्मा की है जिसे आप वीकेंड्स पर सुनते हैं। और लीजिए कुछ कहते हैं कि हमारा तो वीकेंड आज से शुरू हो गया। जी बिल्कुल, फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे से ही यू नो वीकेंड की फीलिंग आने लगती है। और अब जब आपने मेरी आवाज सुन ली है तो कुछ लोगों को तो शायद ये लग रहा होगा कि अरे कहीं आज सैटरडे तो नहीं है। लेकिन आज सैटरडे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ वीकेंड की शुरुआत जरूर हो रही है। आज फ्राइडे का दिन है और जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी का स्वागत है। शेखर आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू तोची जी, एंड हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं और कहते हैं आज तो आपने चौंका दिया, अब तो पूरे 3 दिन आपका साथ रहेगा। जी बिल्कुल, 3 दिन हम और आप साथ रहेंगे और कहते हैं आनंद आ गया। जी आनंद तो आ ही गया क्योंकि आपका नाम नहीं, आप बिल्कुल आप आ गए तो आनंद ही आ गया। और आपने ये भी लिखा है कि किसी को दिल से याद करो तो वो आ ही जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप दिल से किसी चीज को चाहेंगे ना तो वो शाहरुख खान का डायलॉग मुझे याद आ जाता है कि सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इतनी सारी फिल्में डायलॉग्स बातें मेरे दिमाग में घुसी हुई है कि जब भी कोई बात होती है ना उससे रिलेटेड डायलॉग याद आ ही जाता है, क्या किया जाए। एनीवेज बहुत अच्छा लगा आपके मैसेज को पढ़कर, थैंक यू ज्योति जी, धन्यवाद, थैंक यू सहर जी, एंड ऑफ कोर्स हमारे भरत गंगाराम जी, आपको भी प्रणाम नमस्कार और आपका भी स्वागत है इस शो में। तो चलिए गीत यूं ही सुनवाती रहूंगी, लेकिन फिलहाल तो समय हो गया है। Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: तो समय हो गया है आज के प्रमुख समाचारों को सुनाने का, वो भी हिंदी में। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से, सोनम वांगचुक जो अब तक अनशन फटे उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लद्दाख की मांगों और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का उपवास समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा बातचीत की पहल के संकेत के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। उधर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में पेपर लीक पर नए सख्त कानून और विधेयक लाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात कही है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है। उधर अमेरिका का भारत पर 10% टैरिफ जो था, अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने धारा 301 के तहत भारत सहित 60 देशों से आयातित वस्तुओं पर नया 10% से 12.5% तक टैरिफ लागू कर दिया है। और आज 24 जुलाई को ग्लासगो में 2026 के राष्ट्रमंडल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनके मुकाबले शुरू हो चुके हैं। भारतीय एथलीट पैरा पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग में अपने अभियान का आगाज कर रहे हैं। अब कुछ खबरें आपको विदेश से सुनाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार 12 रातों से सैन्य हमले जारी हैं। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तुरंत कूटनीतिक रास्ता अपनाने और युद्ध रोकने की अपील की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों और व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक उद्घाटन हो गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक उद्घाटन किंग चार्ल्स द्वारा किया गया और इस बार 74 यानी कि 74 राष्ट्रमंडल देश इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की शर्तें क्या हैं आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका सऊदी अरब नागरिक परमाणु समझौते से पहले सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना होगा। यही थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त हुए।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: झुक गया आसमान फिल्म से सुनवाया हमने आपको ये गाना लता जी की आवाज में। और मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे बहुत सारे साथियों को ये चेक करना पड़ रहा होगा कि आज फ्राइडे है या सैटरडे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: हमारी प्रज्ञा सोलंकी कहती हैं कि मुझे लगा आज सैटरडे है और मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था। थैंक यू रंजन जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। अर्जुन जी थैंक यू, दिव्या जी थैंक यू, राजेंद्र राज जी थैंक यू, विजय गुनोवा जी, किरण जी हैरो से कहते हैं वेलकम बैक, व्हाट ए सरप्राइज। यस यस, कभी कभी तो सरप्राइज अच्छी लगती है ना। एंड थैंक यू जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं, बस देते रहिए, एक बजे तक ऋतु शर्मा आपके साथ यही रहेगी।
2: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। उनके पास दुबई जाने के लिए बड़ी अच्छी डील्स हैं, तो अपने टिकट्स बुक कराइए और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Leicester Mella is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
4: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.
2: आप होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: रफी साहब की आवाज में शम्मी कपूर पर पिक्चराइज ये गाना फिल्म प्रिंस से लिया था।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और लीजिए लता जी के आवाज में ये अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार चिंतन भी सुनेंगे और आपको कंपटीशन के बारे में भी बताऊंगी।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और 11:03 हुए हैं और ये समय हमेशा ही निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन में मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। देखिए, आजकल का जमाना बहुत बदल गया है, और न सिर्फ जमाना बदला है बल्कि लोगों की सोच बदल गई है, लोगों का व्यवहार बदल गया है, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। पहले जमाने में और आज के जमाने में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, और आजकल जो चीजें हो रही हैं उन्हें देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे किसी गलत चीज को सही ठहरा दिया जाता है और किस तरह से गलत चीज को सही ठहरा दिया जाता है। और ये सब आजकल कितनी आसानी से हो जाता है और इसे कोई रोक भी नहीं पाता। और आपके देखते ही देखते अगर आपके बारे में किसी ने कुछ गलत को सही ठहरा दिया है तो आप उसे बदल भी नहीं सकते चाहे भी। तो जमाना इतना इस कदर बदल गया है। एक कहानी सुनाती हूँ आज भी, छोटी सी, आज के एक युवा लड़के की। एक युवा लड़का जो कि पेशे से एक ब्लॉगर और एक कंटेंट क्रिएटर था, उसकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम यूट्यूब के लाइक्स व्यूज और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी ट्रेंडिंग में आना। हर रोज नई नई चीजें पोस्ट करता और बस देखने में जुट जाता कितने व्यूज हुए, कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने इसे रीशेयर किया, जैसा कि आजकल चलन है बिल्कुल वैसा ही वो युवा लड़का किया करता था। एक दिन वो अपनी नई कार से शहर के सबसे व्यस्त चौराहे से गुजर रहा था और तभी अचानक मौसम बिगड़ा, तेज बारिश होने लगी, और ऐसे में सामने से आती एक अनियंत्रित बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरा और खून से लथपथ होकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई मदद करो, मुझे बचाओ। उस युवा लड़के ने जल्दी से अपनी कार खोली, लेकिन जानते हैं क्या वो उसकी मदद के लिए दौड़ा? नहीं, उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला, कैमरे का एंगल सेट किया और एक लाइव वीडियो चालू कर दिया। वो कैमरे में देखकर बोलने लगा, दोस्तों देखिए, लाइव एक्सीडेंट, क्या दर्दनाक मंजर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा करने वाला वो लड़का अकेला नहीं था, देखते ही देखते चौराहे पर दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। कोई उस तड़पते हुए इंसान का वीडियो बना रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने में व्यस्त था। सबके पास स्मार्टफोन थे लेकिन किसी के भी पास इंसानी दिल नहीं था जो उस तड़पते व्यक्ति को उठाकर अस्पताल पहुंचा सके। और तभी भीड़ को चीरती हुई एक छोटी सी 10 साल की बच्ची आगे आई और उसने अपना स्कूल का बस्ता फेंका, अपनी छोटी सी फ्रॉक से उसने उस आदमी का खून पोंछने की कोशिश की और चीख चीख कर बोली, भैया, अंकल, कोई गाड़ी निकालो ना, इन्हें अस्पताल ले चलो, नहीं तो ये मर जाएंगे। उस बच्ची की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर इंसानियत का दर्द। भीड़ में खड़े लोगों को एक पल के लिए लगा कि अरे ये बच्ची क्या कर रही है, वो एकदम सहम गए। उनके हाथों में पकड़े करोड़ों रुपए के कैमरे और टेक्नोलॉजी जो थी उस 10 साल की बच्ची की हमदर्दी के आगे बौने साबित हो रहे थे। किसी को आखिरकार शर्म आई और उसने अपनी टैक्सी रोकी। बच्ची की मदद से उस घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा, अगर इसे 10 मिनट पहले ले आते
तो शायद इनकी जान बच जाती। वो युवा लड़का जो लाइव वीडियो बना रहा था, उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसके उस लाइव वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों शेयर्स आ चुके थे। कमेंट्स में लोग दुख जता रहे थे, लेकिन उस लड़के का जमीर अब जाग चुका था और उसे समय आया था कि व्यूज पाने के चक्कर में उसने एक इंसान की जान की बाजी लगा दी। और देखिए, इस छोटी सी कहानी से हमें समझ आता है कि आज हम क्या हो गए हैं, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम इंसानियत को भूल गए हैं? क्या वाकई में जमाना इतना बदल गया है?

0: 1954 में कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था ये गाना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और 1954 से लेके 2026 यानी कि 102 साल में, जब उस साल में जमाने की हालत ये थी जब ये गीत लिखा गया, तो आज क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि आज का इंसान इतना बदल चुका है कि वो दूसरों के दुख और तड़प में भी अपना कंटेंट और अपना फायदा तलाशने लगता है। हम इंसानों ने बहुत तरक्की की है, ऑब्वियसली 1954 से लेके अब तक बहुत बदलाव आए हैं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उस समय जन्मे हैं, उन्होंने तो शायद सबसे ज्यादा बदलाव देखे होंगे। टेक्निक ने हमें जोड़ा तो सही है, लेकिन सच कहा है किसी ने, दिलों को मीलों दूर कर दिया है। जो लोगों में पहले एक मिलने की ललक होती थी वो आजकल कम हो गई है। अरे व्हाट्सएप कर लेंगे ना, व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी ना। हाँ, आसानी हो गई है, पहले एक दूसरे को देखने में बहुत तड़प हुआ करती थी, बहुत समय, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था, आजकल खुद देख सकते हैं। लेकिन मिलकर खुद को गले लगाने का जो अनुभव होता है वो आजकल हमें नहीं मिल पाता। हाथ में सबके आधुनिक गैजेट्स हैं, लेकिन सीने में पत्थर का दिल। और समाज में संवेदनशीलता घट रही है और दिखावा बढ़ रहा है। और इस गीत को सुनकर मुझे लग रहा था कि कवि प्रदीप, जो कि इस तरह की ही इंस्पिरेशनल वर्सेस लिखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने क्या सटीक, क्या खूबसूरत गाना लिखा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदला न ये आसमान, लेकिन इंसान बदल गया। यही था आज का चिंतन, और हमारे बहुत सारे साथियों ने आज के चिंतन को पसंद किया है। थैंक यू संध्या बावसर जी, थैंक यू हिना जी, कहती हैं टचिंग भी था और बिल्कुल सत्य वचन आपने कहे। थैंक यू रानी जी, बिल्कुल सबका मानना यही है। और ये मैक मारू महिंद्रा जी, आपका मैसेज मिला है, कहते हैं वावा ऋतु, टुडेज जनरेशन शुड लर्न। यस, ये जो चिंतन होता है इसमें बहुत सारी सीखने वाली बातें होती हैं। जरूर अपने बच्चों को सुनाया कीजिए, अगर उन्हें हिंदी समझ नहीं आती तो उसे ट्रांसलेट करके सुनाइए, और जरूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मैं जरूर सुनती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी बातें आप अपने जीवन में ढाले या ना ढाले, लेकिन सुनने से आपको उस समय के लिए ही सही, कम से कम थोड़ा सा तो बदलाव महसूस होगा। कम से कम कुछ गलत काम करने से पहले एक पल के लिए तो आपके मन में ये विचार आएगा कि कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा मुझसे। और ये जो डर है ना इंसान में, ये रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा डर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद ये डर इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू हिना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी यही कहना है कि चिंतन वॉज हार्ट टचिंग। थैंक यू मंजू काम्बी जी, थैंक यू फरीदा जी, कहती हैं चिंतन सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हम एक जानवर को भी तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं, कोई कैसे एक इंसान को मरने के लिए छोड़ सकता है। लेकिन फरीदा जी, आजकल ऐसा होता है, हम खबरों में सुनते नहीं है, कितनी सारी बातें रोज खबरों में सुनाई जाती हैं, न्यूज में होती हैं, उनका जिक्र यहाँ तो नहीं करूंगी, लेकिन आप सब जानते हैं। थैंक यू सुरेश टकियार जी, अर्जुन जी, थैंक यू गिरीश जी भारत से, थैंक यू फतेह पटेल जी, हरविंदर जी, जैस्मीन, जितने भी साथी, आप सबको जो चिंतन पसंद आता है सभी का धन्यवाद। यही था आज का चिंतन, जिसे आप हर रोज सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद। चलिए समेटते हैं अब चिंतन को, और आपको याद दिलाते हैं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन क्या है बताऊंगी ना अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज देगा आपको 128.3 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollots Hill, Leicester, LE5 4UN.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: After the smash hit run in 2025, Cinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
10: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
9: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
15: It is. You have to be really dedicated to be able to
16: become a
15: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
16: True.
15: Mm. Whether it's at home or whether it's family.
1: Leica Extra is here.
16: Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
17: Leica Radio.
16: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, क्या लिरिक्स लिखे हैं अनजान ने और उस पर क्या धुन बिठाई है राजेश रोशन ने। एक अमर गाना बना दिया है किशोर कुमार की आवाज में, ब्यूटीफुल गीत, हम सभी का फेवरेट। एंड थैंक यू दिनेश पोपट जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया। एंड स्वागत है आपका इस शो में। एंड प्रकाश चथार जी नॉर्थ होल्ड में हमें सुन रहे हैं, कहते हैं ऋतु कैसी हो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आप शो को एंजॉय कर रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, स्वागत है आपका भी प्रकाश जी इस शो में। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल आपके फायदे की है, अगर आप गजल्स पसंद करते हैं, लाइव शो पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए ये कंपटीशन बिल्कुल आप ही के लिए है जो होगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन क्या है। लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th जुलाई एट 7 PM। आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और क्या करना ये मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि अगर आज आप कंपटीशन नहीं जीत पाते हैं तो फिकर नॉट, आप टिकट परचेज कर सकते हैं फ्रॉम hairoarts.com पर जाकर। टिकट्स की जो प्राइस है वो 25 pounds है और अगर आप लाइका रेडियो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके टिकट्स पर ऑनलाइन। और टिकट्स जब आप कंपटीशन जीतेंगे तो हम आपको ऑनलाइन भेजेंगे, इसलिए अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही लिखकर भेजिएगा। लेकिन अभी नहीं, कंपटीशन स्टार्ट होगा प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में, तो रेडियो सेट्स के पास ही रहिए क्योंकि क्या पता मैं आपसे क्या पूछ लूं, है ना। और अगर आप कंपटीशन जीत गए तो आपको फ्री में इस शो को देखने जाने का मौका मिलेगा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था ये गाना फिल्म ससुराल से। और अब इस गाने के बाद आपको एक और खास इन्फॉर्मेशन दे दें। और ये इन्फॉर्मेशन है कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं दिवाली स्टोरी के, द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वैम्बली अरीना ऑन संडे 27th September। और ये एक स्टूडेंट प्री शो है जो होने जा रहा है फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। इसे क्रिएट किया है सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE ने एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामायण टू लाइफ विद 4 chapters, ए बेस्पोक 7-song soundtrack एंड अ फुल इंटरनेशनल कास्ट। टिकट्स अवेलेबल है www.diwalistory.com पर।
1: ये है लाइका रेडियो
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए ये थी अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद मिलिंद का म्यूजिक, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कुली नंबर वन फिल्म से लिया था ये गाना। संध्या भावसर कहती है कि भेलपुरी खाने के लिए तो वो इंडिया जाना पड़ेगा। अरे क्या बात करती हो संध्या भावसर, आजकल यहाँ पर भी बहुत बढ़िया भेलपुरी मिलती है। हमारे यहाँ से इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं चीज़ों के, कहीं भी चले जाइए आपको स्वादिष्ट भेलपुरी यहीं खाने को मिल जाएगी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
5: Leica Extra Podcast Update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टॉपिक है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, और जिसमें हमारे बहुत सारे प्रेजेंटर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
5: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
6: ये है
7: लाइका रेडियो। Leicester Miller is back
8: and the stage is about to explode.

0: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए और 164 बांग्लादेशी टकास.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: The gold rate is 98.01 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
1: Leica Radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
8: Experience an unforgettable evening of timeless guzzles.

0: लता जी और विनोद राठौर की आवाजों में चांदनी फिल्म का था ये गाना शिव हरी का म्यूजिक, जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो से, जो है लाइका गोल्डन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड, और जहां पर ऋतु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए रवि शर्मा जी के मनोरंजन शो में, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में हम एक कॉम्पिटिशन रन करेंगे, तो बिल्कुल समय आ गया है आपको बताने के लिए कॉम्पिटिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, हैप्पी फ्राइडे टू यू टू और हैव ए नाइस वीकेंड, साथ दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। एंड विजय गुनोवा जी हमारे मॉरिशस गए थे, जो लंदन लौट कर आए हैं, और आई एम श्योर आपने वहां पर बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा और अब आप आ गए हैं और आप हमारा साथ देते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो आपको यही कहूंगी कि वेलकम बैक, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड रक्षा पटेल, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको चिंतन अच्छा लगा, थैंक यू साथ देने के लिए। एंड अरुणा जी स्वागत है, तोची जी आपका भी स्वागत है, एंड थैंक यू सभी लिसनर्स जो का जहां भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है शो में। एंड आई एम श्योर आप सब तैयार हैं जानने के लिए कि आज का कॉम्पिटिशन क्या है। तो आपको बता दें कि अगर आप गजल्स के शौकीन हैं और लाइव म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही है। लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स एंड सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं ए नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये प्रोग्राम होने जा रहा है हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30 जुलाई एट 7 PM। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वर्ड गजल लिखना है, गजल लिखिए और भेज दीजिए इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और व्हाट्सएप नंबर क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो आप गजल लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए और साथ में अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट लिखिए क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप टिकट्स खरीद भी सकते हैं और टिकट्स आपको मिलेंगे फ्रॉम herroarts.com पर जाकर। टिकट्स की प्राइस है, स्टार्ट होती है, टिकट्स की प्राइस है 25 pounds और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा टिकट्स पर ऑनलाइन। और बस टिकट्स मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भेजे जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई है, ईमेल के थ्रू आपको भेजे जाएंगे। तो बस देर किस बात की है, फटाफट अपना नाम सबसे पहले लिखिए, गजल अपना नाम लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर। इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन है वो लकी विनर जो रंजीत रजवाड़ा को सुनने जा रहे हैं एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30 जुलाई एट 7 PM।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Amantrika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्ट।
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर महबूबा फिल्म से गाना था, जिसमें राजेश खन्ना के साथ हेमा मालिनी ने काम किया था, और इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी ही है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: हेमंत कुमार के म्यूजिक पर, हेमंत कुमार की आवाज में अपने जमाने का सदाबहार गाना आपने सुना, लाइका रेडियो, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और लाइका गोल्ड रेडियो, जिसे आप सुनते हैं ग्रेटर लंदन में। और इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है। आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। निर्मल एंड किरीट जी, थैंक यू, कहते हैं वेरी गुड आफ्टरनून ऋतु, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज टू हियर यू। और आपने ये भी लिखा है कि आई मिस्ड 2 आवर्स प्लस ऑफ क्वालिटी गुड सॉन्ग्स, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। अब आपने मिस तो किया है, लेकिन अब जितना समय बचा है उतना साथ दीजिए, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू संध्या भाव सर। और कंपटीशन भी चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मिले हैं और देखते हैं, आंसर्स तो नहीं है, मैंने सवाल नहीं पूछा था, एंट्रीज मिली हैं, तो देखते हैं कि कौन बनते हैं आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर। उनका नाम जरूर बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ गानों के बाद बताऊंगी इस वाले शो के एंड में।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि अगर आप स्टेज म्यूजिकल देखना पसंद करते हैं तो आप देखने जा सकते हैं सुरेंद्रेला RIFCOTheatre.com पर आपको विजिट करना होगा टिकट्स बुक कराने के लिए। इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो, और ये आज आप इसे देख सकते हैं दिस जुलाई। टिकट्स और नियरेस्ट वेन्यू के लिए मैंने आपको फिर से याद दिलाना है कि विजिट कीजिए RIFCOTheatre.com पर।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और अब हेमंत कुमार की आवाज के बाद मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ शैलेंद्र सिंह की आवाज।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लीजिए, शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना दिव्या जी आपको डेडिकेट करते हैं, आपको ये गाना अच्छा लगा। और आप में से बहुत सारे साथी कुछ देर पहले ही जुड़े हैं और कह रहे हैं कि अरे हमें पता ही नहीं था कि आज आप हो शो में। एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समय है तो आप लिसन बैक पर जाकर भी गीतों को सुन सकते हैं, वरना हमारे यहाँ से तो 24/7 क्लासिक्स आपको सुनवाए ही जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी, इनफैक्ट एक गाना और बजाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आज के कंपटीशन के विनर कौन बने हैं।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, क्योंकि अब दुबई से जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी खत्म हो गए हैं। आप साउथ होल ट्रैवल को फोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर और अपने हॉलीडेज बुक कराइए। सभी कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।

0: यस लता जी और रफी साहब की आवाजों में था ये गाना। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं आज के कंपटीशन के विनर आखिर कौन है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो भाई ये कंपटीशन हो रहा था किस बारे में, ये गजल का प्रोग्राम होने जा रहा है जिसे आपके लिए लाए हैं सिफत इवेंट्स एंड सोल जैम लंदन।

0: और इसमें परफॉर्म करने वाले हैं रंजीत रजवाड़ा, प्रिंस ऑफ गजल्स. और ये शो है थर्सडे 30 जुलाई को एट 7 PM एट हैरो आर्ट सेंटर में. और अगर आप नहीं जीते हैं आज के शो में दो मुफ्त के टिकट्स, देन आप टिकट्स बुक करा सकते हैं. £25 टिकट प्राइस है. अगर आप लाइका रेडियो कोड यूज करते हैं तो आपको अपने टिकट्स पर 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है जब आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराते हैं. और अगर जो विनर बनते हैं उन्हें टिकट्स ईमेल किए जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेंगी. और जिन्होंने आज का कंपटीशन जीता है उनका नाम है शुमिला मंगर. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं इस शो के दो टिकट्स और ये टिकट्स आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगे. और जो नहीं जीते हैं वो हमारा साथ देते रहिए. हमारे यहाँ और भी शोज हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो हो सकता है आप उसमें उन्हें आपको टिकट्स जीतने का मौका मिल जाए. तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस शुमिला मंगर, आप बनी है आज के इस कॉम्पिटिशन की विनर.
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए and 164 बांग्लादेशी टकास.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is £97.9 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: That's right. We are remembering Hari Krishan Giri Goswami. Kise nahi malum Manoj Kumar ka naam. Manoj Kumar ji was born on 24th of July 1937. Aur dekha jaye to maine jab phone kiya mere doston ko wahan Bollywood mein Mumbai mein aur unke bete Kunal, उन्होंने कहा सब न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स टेलीविजन्स दे आर ऑल फिल्ड विद द नेम ऑफ मनोज कुमार टुडे दे आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 89th बर्थ एनिवर्सरी और मैं जब पूछता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मुझसे कहो जो थोड़ी सी अलग हो फ्रॉम द यूजुअल बेंटर कहाँ जन्मे थे और Of course, everybody knows Abbottabad and कैसे इन्होंने अपना नाम चेंज किया वो सब सबको मालूम है फिल्म शबनम उन्होंने देखी 1949 की फिल्म जहां दिलीप कुमार साहब का नाम था उसमें मनोज तो उन्होंने उनका नाम चेंज करके उन्होंने मनोज कुमार रख लिया BA की डिग्री हासिल की वो भी सबको मालूम होता है एंड 10 साल की उम्र में जब पार्टीशन हुआ तब Many a times I say this, when there is partition, then people move out and go towards Delhi or Bombay or wherever, but they cross the border. And inke 7 Filmfare Awards, 7 Filmfare Awards, beautifully in 55 films. Aur films kaisi, jaise ke inhone log samajhte the ke bas ye... इनका दूसरा नाम है भारत कुमार और ये पेट्रियोटिक फिल्म्स करते हैं लेकिन इन्होंने जितनी फिल्म्स एज अ नॉर्मल एक्टर जो की थी दे वर अमेजिंग मुझे बड़ा मजा आता है कि फर्स्ट आवर में मैं उनकी प्रोडक्शन के गाने मैं सुना रहा हूँ कुछ पेट्रियोटिक गाने सुना रहा हूँ एंड देन इन द सेकेंड आवर विल डू द कमर्शियल फिल्म ऑफ मनोज कुमार जैसे कि हरियाली और रास्ता डॉक्टर विद्या गुमनाम वो कौन थी सावन की घटा बेईमान ये सब फिल्मों के गाने जो हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा इन द सेकेंड आवर एंड इट इज ऑल्सो उत्तम कुमार डेथ एनिवर्सरी इट्स द 46th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द वेरी फेमस Uttam Kumar, who was very popular in the Bengali films. Lekin inhone jo kuch bhi Hindi filmein ki, usme kuch achhe gaane hain. Sorry, I got a frog in my throat. I'm trying to get rid of it. Lekin jab next gaana rakhunga, tab jaake thoda sa paani pi lunga. Anyway, so he passed away in... on 24th of July 1980, I'm talking about Uttam Kumar, who was born in Calcutta and died in Kolkata. 3rd of September 1926, mein janam hua tha unka. He died at the age of 53. Manoj Kumar ji lived a good life. Of course, last years mein he suffered a little bit. Lekin 87 was the age. Like I said, 7 Filmfare Awards. That was quite an achievement and one national award inko Padma Bhushan ka kitab diya gaya tha Dada Saab Phalke award bhi unko diya gaya tha so ye sab baatein jo aap sabko malum hai wohi main bata raha hu lekin kuch kuch baatein hoti hain jab main aapko bataunga jab mujhe ek organizer the an event manager and his name was Ratan Jain, not the one from Venus Films, लेकिन Ratan Jain, an event manager, event company चलाते थे उन्होंने इंदौर में मेरे साथ शो किया था एक और इंदौर में जब शो किया तो 4 दिन पहले शो के मैं मुझे जुकाम हुआ था और मैं हटा ही नहीं पा रहा था मैंने उनको कहा कि यार क्या करूँ मैं 4 दिन बाकी है और मुझे जुकाम हुआ है गाने का मुश्किल पड़ रहा है उन्होंने कहा नॉट टू वरी आई बुक्ड मनोज कुमार जी एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर शो एंड उन्होंने मुझे नंबर दिया मैंने फ़ोन किया उन्होंने पंजाबी में बातें की, 10 मुंडिया की प्रॉब्लम है। मैं क्या डॉक्टर साहब कहूँ, मनोज जी कहूँ, मतलब कुछ भी बोल दे, आज तो तेरा डॉक्टर ही हूँ मैं। ही वॉज अ डॉक्टर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन्होंने 4 छोटी छोटी बॉटल्स मुझे भेजी, सब में सफ़ेद गोलियाँ, मुझे लगा सब सेम गोलियाँ हैं पर अलग अलग थी। उन्होंने कहा कि 3 ये नंबर 1 बॉटल से, 3 दोपहर की बोतल से, नंबर 2 बॉटल से, ऐसे करके 4 गोलियाँ मैंने खाई और 4 दिन में आई वॉज परफेक्ट एंड आई वेंट देयर एंड ही नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। मैंने कहा कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, बोले मैं फ्लाइट से नहीं जाता, मैं ट्रेन से ही जाता हूँ। एंड जब पूर्व और पश्चिम वो फ्लाई नहीं कर रहे थे लंदन, सो ही केम बाय सी एंड पूरा यूनिट 2 महीने के बाद, व्हेन ही रीच लंदन, 2 महीने के बाद पूरा यूनिट आया पूरा पश्चिम का टू लंदन बाय एयर। लेकिन ही वुड नॉट ट्रेवल बाय एयर, ही वुड गो बाय ट्रेन और बाय शिप। सो दीज आर द लिटिल स्टोरीज दैट आई वॉज टोल्ड बाय पीपल लाइक हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ एज वेल। Wonderful person. I was happy I met him.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you today up to 128.3 Indian rupees. 128.3 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Lister, LE1-2JU and 2A, Rollots Hill, Lister, LE5-4UN.
4: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gama Pa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in Birmingham on Friday, 31st July. At Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
8: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन उनका फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: मनोज कुमार। नेक्स्ट नेक्स्ट आवर में उनकी जो कमर्शियल फिल्म्स थी उनके गाने मैं आपको सुनाऊंगा। बट कमिंग अप नेक्स्ट वी आर गोना रिमेम्बर उत्तम कुमार ऑन हिज 48th डेथ एनिवर्सरी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3312, Indian rupees 128.46, Pakistani rupees 369.7, Afghan Afghanis 87.72, Kenyan shillings 172.38, and Mauritian rupees 63.14.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £98.07. Per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
5: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
6: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

एंड दिस इज छोटी सी मुलाकात, और ये पिक्चराइज हुआ था ऑफ कोर्स उत्तम कुमार और वैजयंती माला पे. लेकिन हमारे रियल हीरो हीरोइन तो ग्रीस से अभी लौटे हैं, एंड दैट इज फ्रॉम रोड्स इन ग्रीस, एंड दैट्स राजीव पटेल एंड हिज वाइफ विद रेस्ट ऑफ द फैमिली, एंड दे हैड अ वंडरफुल ट्रिप, एंड दे आर ड्राइविंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट टू गो टू मिल्टन कीन्स. सो वेलकम बैक टू यू कैन से यूके आफ्टर अ ब्यूटिफुल हॉलीडे इन द रोड्स. छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई. जी हाँ, हम याद कर रहे हैं उत्तम कुमार जी को. उत्तम कुमार, he was born on 3rd of September 1926 and passed away on 24th July 1980 at a very young age of 83. अब हम आगे दूसरे गाने सुनेंगे और कुछ बातें भी करेंगे. Like Radio Network. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा. फिल्म अमानुष, किशोर दा ने गाया. इन्होंने शर्मिला टैगोर जी के साथ काफी फिल्में की थी. एंड अ मैन हु वाज नोन एज द महानायक ऑफ द बंगाली सिनेमा. ही डोमिनेटेड बंगाली सिनेमा फ्रॉम 1950s थ्रू 1970s. लेकिन इन्होंने हमें कुछ हिंदी फिल्में भी दी. He worked in 211 films till his death in 1980. Let's remember the great man, Uttam Kumar, Arun Kumar Chattopadhyay, asli naam unka.

इंदिवर जी ने इतनी खूबसूरत लिरिक्स लिखी, संगीत दिया श्यामल मित्रा ने। फिल्म शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष। वॉन्ट टू वेलकम विजय गुडोरी बैक टू यूके। ही हैड गॉन फॉर प्रेयर्स फॉर हिज सिस्टर्स। पहली पुण्यतिथि ओम शांति। He's back from Mauritius, by the way.

0: अनदर ब्यूटीफुल फिल्म गुमनाम, जिसमें गाना बड़ी अच्छी तरह से पिक्चराइज हुआ था, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की ऑफ कोर्स लिरिक्स।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.
0: And we have some good news. And we have some good news. That's right. You have heard about Udit Narayan. And there is going to be a nice, wonderful Instagram coming out with all the presenters presenting their own favorite Udit Narayan song. तो सुनिएगा, मेरा फेवरेट गाना कौन सा होगा, गैस कीजिएगा, पता चले तो मुझे बता दीजिएगा कौन सा गाना मैंने चुना होगा. So it's going to be Udit Narayan. There's so much excitement there. Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at leicaradio.com. And Leica Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena, Wembley on Sunday, 27th September. Visit AXS or Wembley for tickets.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands पर.
0: फिल्म है वो कौन थी, एवरीबडी नोज व्हाट अ हिट फिल्म दैट वाज विद द ट्रिलॉजी ऑफ साधना जी. वो कौन थी में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर जी ने गाया ये गाना, छोड़कर तेरे प्यार का दामन.

0: जी हाँ, राज खोसला जी जिन्होंने साधना जी की लाइफ बना दी विद द ट्रिलॉजी ऑफ मिस्टीरियस फिल्म्स। मनोज कुमार जी, वाह वाह, डॉक्टर आनंद का रोल जो किया था इन्होंने, एंड महेंद्र कपूर जी ने कितना अच्छा गाया इसमें।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208574 8410. At all protected.

0: film Dobadan. And next one is a birthday song.
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.
0: हमारी प्यारी रमीला पटेल जी के देवर भरत जी का बर्थडे है.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
4: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
5: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सब के लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
7: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Glad you're enjoying the tribute of Subir Sen.
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika aur female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: जीवन चलने का नाम, और मैं भी अभी चलने का नाम कर रहा हूँ। एंड एंडी सैंडी शाह इज लाफिंग, सैंडी शाह इज हियर, एंड वी गॉट एनिका हूज गोना टेक ओवर फॉर राजपतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स, एंड सैंडी शाह विल टेक यू ऑन अ ड्राइव टाइम। Have a wonderful weekend, everybody. I'm off to Southampton for the Mela. Bye-bye.
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
0: गुस्सा फजूल है जिसने नहीं जीता कंपटीशन। मनोहर नेहरा जी, congratulations. Tickets will be emailed to you.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Raja, the vocals of this one, with Alka Yagnik, the OG singers of this track. The movie was Arjun Pandit. Big shout out going out to Krish, first one with the right answer, saying, oh my God, Radio Wally, what a Friday banger. Time now, though, for your feel-good track of the hour. And, of course, today is going to be a very, very, very special one.
1: Feel-good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So as Nivran 3 officially comes to an end until October, hum aaj Mata Rani ko vidai dete hai aur bolte hai ki sada hamare ghar mein, hamare dil mein, hamare aaspaas baraste rehna, baraste rehna. प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, सबको खुशियां दो, सबके दिलों में प्यार बढ़ाओ और सबको एक सीख दो, जियो और जीने दो. थैंक यू फॉर ऑल द लव ओवर द लास्ट 10 डेज वी सेलिब्रेटेड नवरात्रि हियर ऑन द रेडियो वाली रोलर कोस्टर. मे माता रानी कीप यू एंड योर लव्ड वंस हेल्थ वेल्थ एंड ब्लेस्ड. हैप्पी नवरात्रि फॉर वन फाइनल टाइम.

0: Once again, a big thank you to each and every single one of you for all your beautiful messages and for celebrating Navaratri with us. Remember, this was Asad the Gupta Navaratri. So I hope aapne jo jo bhi prarthna ki hai, puja ki hai, paath ki hai, wo gupt mein kiya hai. Because this is not the one where we tell the world how we're praying, but it's more an internal spiritual prayer. Happy Navaratri.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Radio Wally, bringing you the freshest Fri-yay flashbacks.
3: Like a radio.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: Mocha Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
5: Punjab, the biggest tunes,

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
3: Yeah, like a go.